दुख दारू सुख रोग में आजा सुखार न होई, तू करता करना मैं ना जाहूं कहीं न होई।

0: साई कर कमल तो छोड़ते न पाए नानक की बाहरी हो दूनी न जाए सो करे जित सर जाए सो करे जित सर जाए
1: वाहिगुरु जी का खालसा
2: सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी वाहे गुरु धन वाहे गुरु साहेब जी वाहु प्रगटयो मर्द अगमडम

0: जित सुख वसै मनवाए।
1: आप जी रोजाना इस अस्थान तो अमृतमयी बाणी की लड़ीवार शब्द विचार का लाहा प्राप्त करते आ रहे हो। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज पातशाह जी वल्लों उचारण किते हुए पावन श्लोक, धन गुरु रामदास पातशाह जी वल्लों उचारण किया पौड़ी का पाठ आप जी ने सरवण किया है, जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी पावन अंग 554 के उपर सभायमान है। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी पावन श्लोक विच कृपा कर दे। नानक गुरु अमरदास महाराज जी आख रहे ने, बिन सतगुर भेटे सतगुरु नू मिलन तो बिना जग अंध है। ये जगत दे लोक अंधकार दे विच जी रहे ने, अज्ञानता दे विच। अज्ञानता एक हनेरे दा रूप है, वह हनेरा जिदे विच कुछ भी दिखाई नहीं दिंदा। अंधे कर्म कमाए, इसलिए लोग अज्ञानता दे वस हो के अंधे कर्म जड़े ने वो कर रहे ने, फोकट कर्म। धर्म दे नाम दे

तू आ गल मन लवे फिर रिपीट कर दिया ध्यान ला के सुनियो। सतगुरु फुरमाया कारी यह करियो आ बड़ा कर्म कर। गुरु द्वारा होए कै साहिब संभाले हो, साहिब सदा हजूर है भरमै के छौड़ कट कै अंतर जोत तरे हो। हर का नाम अमृत है दारू यह लायो। आ वाली दवाई अपनिया अखां दे विच पा। सतगुर का भाणा चित रखो, सतगुरु का हुक्म भी याद रख परहेज वाला, फिर संजम रख के सच्चा नेह सच्चे नाल नेह पा लै। फिर असी पुछिया भी महाराज तुहाडा हुक्म मन के ये कर लैने कर्म, फिर सानू इहदा फायदा की होएगा, सानू की लाभ होएगा, इहदा की बेनीफिट सानू मिलेगा। महाराज कहिंदे नानक इत्थै सुखै अंदर रख सी। इत्थै आ जिहड़ी जिंदगी आपां जी रहे हां ना, इत्थै उह तुहानूं सुख च रखेगा, डोलण नहीं देगा। जिन्ने मर्जी वड्डे दुख आ जाण, मुसीबतां आ जाण, औखियां घड़ियां आ जाण, उह तुहानूं रखेगा, डोलण नहीं देगा। आगै सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभ कीता, परमेश्वर बणत बनाई फिर डोलत कतहू नाही। तू गुरु दी गल मन के तुर तां सही, वह तेनू हर मोड़ ते हर कदम ते रखेगा, वह तेनू कदे डोलन ही नहीं देगा, डिगण नहीं देगा। औखी घड़ी ना देखण दई, अपना बिरद संभाले, हाथ रख अपने को सास सास प्रत बाले। इसलिए महाराज कहिंदे तू आ जो फरमाया है उहदे ते अमल तां कर। जे तू अमल करेगा फिर इत्थै सुख है अंदर रख सी, सुख विच रखेगा तैनू। अगे हर स्यों केल करे हो, अगे जदों शरीरक चोला छड के इस जीव ने जाना उस मालक दे घर विच, उहनू खुशियां मिलणगियां, आनंद मिलेगा, खेड़ा मिलेगा, उस प्यारे दा मिलाप मिल जाएगा जिदे विच केल करे हो, जिदे विच तू खुशियां विच मौजां माणी, तैनू प्यारे दा मेल मिल जाएगा अगे। ते जे तू इत्थे गुरु दी गल नहीं मन्नी फिर ध्यान रखी, फिर लोक गयो पर लोक गवायो, फिर इत्थे भी सुख नहीं उत्थे भी थां नहीं मिलनी। इसलिए महाराज कहिंदे जो फरमाया है उहदे ते अमल कर। आपां गुरु साहिब दा रोज हुक्म सुणदे आ पर अमल किन्ने कु करदे आ? सुणदे तां सारे ही आ आपां, पर उहदे ते अमल कौन कर रहा है? चेता कौन रख्या? अमृत वेले हुक्म आया, रात दे सौण तक हुक्म किनू किनू याद रहिंदा है वी अज मेरे महाराज ने अमृत वेले आ हुक्म दिता सी, रात तक किनू याद रहा? इसलिए साहब जी कहिंदे आह जो फरमाया है एक कर्म करेगा ते आ फल तेनू प्राप्त।

वैसे पूरा संसार ही उसकी बगीची है, असी सारे उस बगीची दे फुल हाँ, ते साडे सारियां दा माली इको ही है, सिंचन हार है, एक है माली खबर करत है पात पात डाली, ये सारा बगीचा ही उहदा बनाया होया है, असी सारे उहदे बगीचे दे फुल हाँ। कहिंदे ने माली भी एक ही है, आपे माली आप सब सिंचै, सारियां विच पानी भी आप ही सिंच रहा है, आपे ही मोह पाए फल भी वह आप ही दे रहा है, रिजक दाता भी वह आप ही है, सबना नू रिजक देन वाला भी

बस जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लखास तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मान चितवहे उद्दम जा आहर हर जियो प्रया सैल पत्थर में जंत उपाए ताका रिजक आगे कर थरिया मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाओ जननम पिता लोक सुत बैंता कोई ना किसकी तरिया सिर से रिजक समाहे ठाकुर काहे मन पाओ करिया ऊडे ऊडया वै सैकुंसा तिस पाछे बचरे छरिया।

मूढ़ कछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह भव। आप अपनी बुध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तो है तेती, तुमरा लखा ना जाए पसारा, के विद सजा तम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग बहो राव कहीं पूपा, अंड जे रसे तज कीनी, उत्पज खान बहुर रच दीनी, कहो फूल राजा हवै बैठा, कहो सिमट पयो शंकर अकैठा, सगरी सृष्ट दिखाए अचंप, आजुग स्वरूप स्वयंप, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखियो बा असिख संघरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रणगाता, जे आस्तु जे तव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तुहाय मरे, पुरख जौन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार ते है, ताके काल निकट न है, रक्षा हुए ताहि सब कला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्कला, कृपा दृष्ट तन जाहे न हरे हो, ताकि ताप तनक मैं हरे हो, रिद्ध सिद्ध घरमो सब होई, दुष्ट शाह शवाय सके ना कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा,

सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे लेहो बारी। सरठो मोहो सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरह नहीं आन्यो। राम रहीम प्राण कुरान अनेक कहे मत एक नाम मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब है बहुपेद कहें हम एक ना जान्यो।

राजेयस् गोविंदास्तोहार रामकली महला तीजा अनंत इको ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मनवजियां वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आइया शब्दो तां गावो हरी के रा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया

तीर है सच्चा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जैनों भुखा सब गवाइया कर

जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कही अत है सूरा, आत्म जिन सगल वस ताके।

इतनी सेवा परिवार करी कीर्तन कर गया अनेक प्रकार का पुला बख्श लैनिया धनबाद पातन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का जिन्होंने आप तरस करके सिर पर हाथ रखे कीर्तन की सेवा सही है। आप सब संगत का बहुत बहुत धनबाद जिन्होंने बड़े ही कई चलना कीर्तन सर्वस किया है। आओ आओ गज बज के फतेह जी जी वाहे वाहे वाहे।

ज्योति कैसी आरती होए पगपंडना तेरी आरती अनता शब्द वाज अंत भेरी रहाओ सहस तब नैन न नैन है तो एको सहस मूर्त न एक तो ही सहस पद विमल नेक पद गंध में सहस तब गंध चलत मोए सब मैं ज्योत ज्योत है सोए तिस दे चानण सब मैं चानण होए गुरसाखी ज्योत प्रगट होए ज्योत इस भावै सो आरती होए हर चरण कौलम ग्रंथ लोभित मनो वंदनो मोहे आही बेआसा कृपा जल्दी नानक सार को जाते तेरे नाए वसारा गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध कृपा प्रया मिल साधु खंडल खंडाए पूर्व लिखे गुरु पाया मन

एक पढ़े सुने गावे पर बातें करे इशनान, इशनान करे पर बात सुध मन, गुर पूजा विद सहत करं, कंचन तन होए परस परस को, ज्योत स्वरूपी ध्यान तरं, जग जीवन जगन्नाथ, जल थल में रहया पूर, बहु विद वर्णन सत गुर गुर सेव

अनंत अनाद आद जिस कोई ना जाने, शिव ब्रंच तर ध्यान नितै जिस वेद बखाने, निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई, पंजन गड़न समथ तरन तारन प्रभ सोई, नाना प्रकार जिन जग कियो, जन रस जन मथुरा।